0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 3 जुलाई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि वीजा संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, तो आज कार्यक्रम में इससे जुड़ी कुछ जानकारी रहेगी आपके लिए. भारत से रिपोर्ट तो कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी ही और मुलाकात करेंगे एक वादक कलाकार के साथ में जो बजाते हैं एक अलग ही तरह का साज. तो साज की बात हुई है तो आइए मैं आपको एक धुन सुनवाती हूं. आप इसमें से जो साज आपको सुनाई दे रहे हैं उनको तो जरा पहचानिए. तो अगर आपने इन साजों को पहचान लिया है तो बस इसी में से एक साज के वादक के साथ में आपकी मुलाकात करवाऊंगी. लेकिन ये दोनों कौन से साज हैं इसके बारे में आप मुझे अवश्य लिखें 0439799767 पर. और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार. शुक्रवार 3 जुलाई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. न्यू साउथ वेल्स में पहली बार H5 बर्ड फ्लू का एक संदिग्ध मामला सामने आया है. मिड नॉर्थ कोस्ट में हॉक्स नेस्ट के पास एक बीमार बहुत ही बड़ी पेट्रोल की सूचना आम लोगों ने दी. शुरुआती टेस्टिंग में H5 इन्फ्लुएंजा का परिणाम सकारात्मक आया और अब 500 से अधिक सर्विलेंस स्टाफ क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं. न्यू साउथ वेल्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर तारा मोराटी का कहना है कि पैनिक में खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस समय पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. वेलेंजुएला में सिर्फ 38 सेकंड के अंतर में आए दो शक्तिशाली भयानक भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2600 यानी कम से कम 2595 हो गई है. लोगों ने सरकार की आलोचना की है. उनका कहना है कि कई लोगों को अपने प्रियजनों की तलाश में नंगे हाथों से मलबा खोदना पड़ा. वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्रेस ने अधिकारियों द्वारा देरी करने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग के चांसलर माइकल स्टिल ने ICAC जांच में सबूत

0: देने से कुछ दिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ये संस्था इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी का काम कंसल्टिंग फर्म्स को गलत तरीके से दिया गया था और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी की गई थी। AFL की पूर्व खिलाड़ी निकी विनमार को उत्तरी विक्टोरिया में एक महिला पर हमला करने का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली विनमार को 1993 के उनके नस्लवाद विरोधी स्टैंड के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जब उन्होंने भीड़ से नस्लीय दुर्व्यवहार के बाद अपना जम्पर उठाया और स्किन की ओर इशारा किया था। कैनबरा में अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की अफगान कम्युनिटी तालिबान राज को किसी भी तरह की मान्यता देने के खिलाफ चेतावनी दे रही है। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से एग्जाइल में काम करने के बाद एम्बेसी इस हफ्ते औपचारिक रूप से बंद हो गई। डीफैट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया तालिबान को मान्यता नहीं देता है और उनके अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स को स्वीकार नहीं करेगा। कल बृहस्पतिवार को भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। NDTV से मिले समाचार के अनुसार इसके साथ ही आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मजबूत संयुक्त संदेश भी दिया गया। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लंबी बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा विकास, समृद्धि और मजबूती के लिए रणनीतिक तालमेल और भरोसे की साझेदारी को आगे बढ़ाना शीर्षक वाले एक संयुक्त बयान को जारी किया। और भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT अब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे साधु संत चंपक राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सवाल उठ रहे हैं। NDTV से मिले समाचार के अनुसार 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। SIT अपनी पहली जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब एक बार फिर अयोध्या जाकर जमीन और आभूषणों की डिटेल खंगालने पर काम हो रहा है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की। उन्होंने अपने एक संबोधन में दशकों तक चल रही उस सरकारी व्यवस्था के लिए औपचारिक माफी मांगी है जिसके तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद लेने के लिए मजबूर किया गया। क्या है ये पूरी बात और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रही हैं नताशा कौल।
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने औपचारिक रूप से उन हजारों महिलाओं से माफी मांगी है जिन्हें सरकारी नीतियों के तहत उनके नवजात बच्चों से अलग कर दिया गया था। ये विवादित व्यवस्था 1970 के दशक तक जारी रही। ये बात उन्होंने संसद में दिए गए अपने एक संबोधन में कही। इस व्यवस्था के तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद देने के लिए मजबूर किया गया था। अनुमान के मुताबिक वर्ष 1949 और 1976 के बीच इंग्लैंड और वेल्स में अविवाहित माताओं के लगभग 1,85,000 बच्चों को गोद लिया गया था।
2: It was awful here. It really was awful. And it's lived with me all my life.
1: ये थी लिन रॉडन जिन्होंने पिछले साल BBC से बात करते हुए अपना दर्द साझा किया था। वे ब्रिटेन के सेंट एग्नेस होम लौटी थी जहां दशकों पहले एक अविवाहित युवा मां के रूप में उन्हें अपना नवजात बच्चे को जबरन देने के लिए मजबूर किया गया था। ये जबरन गोद लेने की नीति ब्रिटेन सरकार द्वारा मुख्य रूप से 1949 से लेकर 1976 के बीच लागू की गई थी, जिसमें कथित तौर पर चर्चों ने भी सहयोग किया था। और इसी साल की शुरुआत में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी सारा मलेरी ने भी इस मामले में चर्च की भूमिका के लिए माफी मांगी।
3: We are profoundly sorry for the pain, trauma and stigma.

0: experienced and still carried today by many people as a result of historical adoption practices in homes linked to the Church of England.
1: 4 saal pehle Britain ki Human Rights Committee ne apni report mein निष्कर्ष निकाला था कि अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए आखिरकार ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्टामर ने इस सप्ताह उन कुछ माताओं और बच्चों से मुलाकात की जो इस जबरन गोद लेने की नीति से प्रभावित हुए थे।
2: But I just wanted to take the opportunity to see you personally, face to face, to make that apology as well.
1: और बाद में दिन में उन्होंने सरकार की ओर से औपचारिक रूप से माफी भी मांगी.
2: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
1: माफी के साथ साथ Keir Starmer ने इस नीति से प्रभावित माताओं और बच्चों के लिए कई सहायता उपायों की घोषणा भी की। इनमें गोद लेने से जुड़े रिकॉर्ड तक बेहतर पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि जबरन गोद लेने की इस नीति के प्रभाव आज भी कई परिवारों के जीवन में गहराई से महसूस किए जा रहे हैं।
2: Those who grew up believing that they were unwanted, some of whom were even told directly that they were second class. To those who've carried a burden of loss, confusion and stigma, or who experienced neglect and abuse without the protection or oversight that should have been their right. To those who've experienced lifelong uncertainty, loss, or questions about identity and belonging, or whose mental and physical health, relationships, and sense of self across their lives has been affected. To the fathers who are denied a voice, excluded from decisions, or separated from their children. To the siblings, grandparents, partners, and extended family, and future generations who've lived with the consequences of these practices. To those who experienced harm from these practices, even while being brought up in loving homes by their adoptive parents. To those who were adopted across borders or cultures, who lost connections to their heritage, racial and personal identity. And to those from ethnic minority backgrounds who experienced racism or were treated differently within these systems.
1: Britain उन कई देशों में शामिल हैं जो अब अतीत की उन सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक प्रथाओं और सरकारी नीतियों पर आत्ममंथन कर रहा है, जिनके चलते अविवाहित माताओं को सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्भ अवस्था के दौरान उन्हें संस्थाओं में रखा गया और बाद में उनके बच्चों को विवाहित दंपतियों को गोद दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की सरकारें भी ऐसी ही नीतियों के लिए पहले ही औपचारिक माफी मांग चुकी हैं। वहीं नेदरलैंड्स में भी इस सप्ताह डच कैबिनेट ने 1950 से लेकर 1980 के दशक के बीच लागू रही जबरन अलगाव और गोद लेने की नीतियों के लिए आधिकारिक माफी जारी की है। ब्रिटेन में इस नीति से प्रभावित एक मां ने स्काई न्यूज से कहा कि सरकार की ये माफी उनके लिए एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक क्षण है।
3: I am so proud of today. We have waited for this day for so long. It means the world to us.
1: SBS न्यूज से डेबरा गुरारके की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।
4: तो श्रोताओं आपने ये रिपोर्ट सुनी और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज मुलाकात करेंगे एक कलाकार के साथ में जो बजाते हैं एक खास वाद्य भी। तो वो कौन सा वाद्य है या मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि एक धुन आपको सुनवाती हूँ, इनमें जो वाद्य बज रहे हैं बस आप उनको पहचानिए और मुझे लिख भेजिए 04397997677 पर। सुनिए ये धुन

0: मुझे लगता है कि आपने दोनों ही वाद्यों को बिल्कुल पहचान ही लिया होगा, तो बस आपको क्या करना है, आपने मुझे उन दोनों वाद्यों के नाम लिख भेजने हैं। आसान सा सवाल है, आप अपना इस सवाल का जवाब भेजें और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि जो अभी वीजा में जो बदलाव आए हैं, वीजा संबंधित आपने सुना ही होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आज यानी जो नई सार्वजनिक सूचना है उसके अनुसार जो वो सेवाएं हैं वो 1 जुलाई से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ और हमें जानना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे मैं बात करूंगी ही। और आपकी एक मुलाकात भी है कार्यक्रम में एक कलाकार के साथ जो बजाते हैं एक साज। और अगर कार्यक्रम में आप बस अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, तो एक धुन मैंने आपको इस अंतराल से पहले सुनवाई थी, उसको मैं आपको दोबारा सुनवा देती हूँ और आप जरा पहचानिए तो कि ये कौन से वाद्य बज रहे हैं। तो आपने इन वाद्यों को तो पहचान ही लिया होगा, तो बस आपने अपने जवाब मुझे लिख भेजने हैं 0439799767 पर। और अभी भारत से हमारे संवाददाता विश्वरतन के साथ ये रिपोर्ट।
5: भारत और जापान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को शिखर वार्ता हुई। इस दौरान आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भारत के विदेश

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Batteries or pharmaceuticals, including APIs and KSMs, or technical collaboration for resource exploration and mapping of critical minerals. The second major area of discussions today was energy resilience.
2: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए मिलकर काम करने को लेकर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। दोनों नेताओं की बातचीत का ब्यौरा देते हुए विक्रम मिस्त्री कहते हैं,
1: Both leaders acknowledge the role that our special strategic and global partnership plays in so far as peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास में जापान की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री तकाइची के साथ शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
3: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।
2: इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति के लिए मिलकर काम करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लाने की तैयारी चल रही है। राज्य की भाजपा सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने वाली है। भाजपा लंबे समय से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की वकालत करती आई है। हालांकि पहले प्रस्तावित कानून के मसौदे की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसे 4 हफ्ते का समय दिया गया है। राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस बारे में बताया,
4: 4 हफ्ता के लिए हमारे ऑनरेबल जस्टिस देसाई जी को दिए हैं और वो 4 हफ्ता वो देखेंगे और फिर वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रखा जाएगा, टेबल किया जाएगा।
2: यूसीसी विधेयक का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस इन दिनों आंतरिक गुटबाजी और विघटन के कगार पर है। 2/3 सांसदों का गुट पहले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी का साथ छोड़ चुका है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है। ज्यादातर विधायक बागी गुट के साथ ही हैं। पार्टी पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, इसका फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी यानी दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। 6 जुलाई यानी सोमवार तक इन्हें अपने दावे के समर्थन में जवाब आयोग को पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के बाद अब चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर दान एवं चढ़ावे में हेरा फेरी करने का आरोप लग रहा है। चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईटी जांच में कुछ खुलासे हुए हैं।

0: तक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप भाजपा आरएसएस पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक ने इस बारे में कहा,
1: स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं लेकिन क्षण में मिट जाते हैं। जैसे क्षण भंगुर है जीवन, वैसे ही सपने होते हैं। स्वप्न देखना है तो देखो, लेकिन सोच समझ कर देखो। सपने बड़े क्रूर होते हैं, सपने सदा चूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, इस देश के धर्म प्रेमियों को जो सपने दिखाए हैं, वो एक एक करके सारे सपने टूटते जा रहे हैं, चूर होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जो राम को लाने की बात करते थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि वो राम भगवान के यहाँ जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसको भी आज आपके समक्ष वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रवीण पाठक कहते हैं,
1: जब हर बात का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, बड़े अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: भाजपा लगातार निष्पक्ष जांच की बात दोहरा रही है। पार्टी का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। विवाद के केंद्र में रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस बैठक के दौरान इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: श्रोताओं, भारत से आपने ये रिपोर्ट सुनी और अब समय हुआ है एक अंतराल का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके संदेश ना आएं। आप अपने संदेश मुझे भेजते रहिए।
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
4: Bike sputtering on me.
5: That's not what you want on a cross-country trip.
4: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
5: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
4: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
5: No, I can't say I have.
4: It's like Stonehenge, but shiny.
6: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको एक झलक सुनवाई थी तो हमारे श्रोता ब्रजेश जी ने उस धुन को सुनकर अपना सही जवाब तो लिख भेजा है और हमारे एक श्रोता उसे दोबारा सुनना चाहते हैं, तो लीजिए आप सबके लिए उसकी झलक एक बार फिर सुनवा रही हूं। जी, तो मुझे लगता है कि आपने अब तो इन दोनों ही वाद्यों को पहचान भी लिया होगा, तो अपना जवाब आप मुझे लिख भेजिए 04397999।

0: 107.7 पर, और कार्यक्रम में आगे आपकी मुलाकात करवाऊंगी ही उस कलाकार से जो उनमें से एक वाद्य को बजाते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में VFS ग्लोबल और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी काउंसलर पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। अब नई सार्वजनिक सूचना के अनुसार ये सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन इस दौरान आवेदकों की सहायता के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और समर्थन सेवाएं तो जारी रखी गई हैं। क्या है वो और ये क्या है पूरी चीज जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है जानना, तो सुनिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
1: VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की सार्वजनिक सूचना के तहत ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर पासपोर्ट एंड वीजा यानी CPV सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। नोटिस में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये अस्थायी रुकावट विशेष रूप से उन आवेदकों के लिए असुविधा और अनिश्चितता का कारण बन सकती है जिन्हें तत्काल यात्रा या काउंसलर सेवाओं की आवश्यकता है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। लगभग 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के रितेश जी, जो अब एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और भारतीय समुदाय के बीच काफी सक्रिय रहते हैं, स्थिति पर अपनी राय हमारे साथ साझा करते हैं।
2: It's saddening. It's bad के इस तरह से जुलाई का महीना है जब स्कूल हॉलीडेज है, पिक सीजन है, फैमिली ट्रैवल करेंगी और इस टाइम में ये इश्यू हुआ है। अभी इसमें क्या हुआ है कि पासपोर्ट रिन्यूअल से बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स के वो रुके हुए हैं, OCI कार्ड जिनको प्रोसेस कराने हैं वो उनको दिक्कतें आ रही है, पुलिस क्लियरेंसेस रखते हुए प्लस अटेस्टेशन सर्विसेज पे दिक्कतें आ रही है। और ट्रैवल का मैं इसलिए बोला कि ऑलरेडी ई वीजा अलाउ किया है हाई कमीशन ने, बट फिर भी लोग

0: su SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Para mi mitra, uno ne ye bataya, uno ne yaad dilai Sushma ji ki, ke Sushma ji ne situation itni sudhar di thi. Uno ne jab sudhar laye the, then it was quite welcome change. In fact, mera passport itna jaldi aa gaya tha, mera us time Indian passport holder tha main. और रिन्यू करके इतना जल्दी आ गया कि मेरे वर्क कलीग थे जो लोकल ऑस्ट्रेलियन, वो भी सरप्राइज होकर बोलते यार गजब है, मतलब इंडिया इतना तरक्की कर गया कि इतना जल्दी तुम्हारा पासपोर्ट आ गया और हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। और मेरा जो कमेंट था, फिर मैंने देखे जो अच्छा काम है उसको उसकी सराहना भी करनी चाहिए, तो मैंने एक कमेंट मैंने किया था कुछ सोशल मीडिया में और वो कमेंट हमारे जो प्रधानमंत्री उनके पोर्टल में चला गया था कि देखो ये एनआरआई है और ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कहने के लिए कि उसके बाद जो स्पेशली कुछ समय से जो सिचुएशन है इतनी खराब हो रही है और वी हैव एक्चुअली गॉन बैकवर्ड्स, वे बैकवर्ड्स, और अब तो ये मतलब बिल्कुल ही बैठ ही गया है, तो इट्स वेरी सैड।
3: वो आगे डायस्पोरा के बीच फैली निराशा और असमंजस की भावना जाहिर करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं।
2: डायस्पोरा जो है हमारा इंडियन डायस्पोरा, ये बाहर रह के भी जो देश के लिए जो प्यार है हमें, वो इंडिया को सपोर्ट करता है। और ये देखा जाता है कि अभी मोदी जी आने वाले, इसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है, प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जा रहे, रेडी हो रहा है, लोग बड़े उत्साहित है जाने के लिए उस प्रोग्राम्स में। एंड देन सडनली कम्युनिटी को ये भी जब पता चल रहा है कि भाई ये हमें अभी वीजा का इश्यूज आने लगा है, तो दे आर क्वाइट वरिड भाई क्या होगा, चल क्या रहा है, मतलब व्हाट इज देयर, क्या हमारे काम रुके हुए सारे।
3: शेरो शायरी का शौक रखने वाले रितेश जी ने अपने विचार कुछ इस अंदाज में भी बयां किए हैं।
2: सरहदों के पार भी धड़कते हैं कई दिल तेरे लिए हिंदुस्तान, सिर्फ कागजों का मोहताज ना रह जाए अरमा हमारे हिंदुस्तान, मुश्किलों में हाथ थाम लेने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, मुश्किलों में हाथ थामने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, दूर सही पर हम भी तेरे बच्चे हैं ए हिंदुस्तान।
3: हाल ही में मई के महीने में मेलबर्न में नए काउंसिल जनरल अनीश रंजन ने भारतीय मीडिया के पत्रकारों के साथ एक छोटी सी बैठक की। इसे कवर करने के लिए SBS हिंदी टीम की तरफ से नताशा कॉल भी वहां मौजूद थीं। इस दौरान काउंसिल जनरल ने भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, जिनमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI से जुड़े विषय भी शामिल थे। VFS कार्यालयों में OCI और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबी प्रतीक्षा को स्वीकार करते हुए अनीश रंजन ने यह भी साझा किया कि इस समस्या के समाधान और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कार्यालय किस तरह काम कर रहा है। उन्होंने मेलबर्न के VFS सेंटर में दी जाने वाली सेवाओं को लेकर कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में भी बताया।
4: तो ये एक खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि VFS सेंटर जो अभी स्वैनसन स्ट्रीट में फंक्शन कर रहा है, उस ऑफिस को हम चेंज कर रहे हैं और नया VFS का ऑफिस उसका इनॉग्रेशन होगा सेंट किल्डा रोड में अगले 5-6 हफ्तों में। तो उसके बाद क्योंकि नए बिल्डिंग में 15-16 काउंटर्स हो सकता है, तो उससे ज़्यादा हम सर्विस दे पाएंगे। और अभी जो अपॉइंटमेंट साइकिल का प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट साइकिल मीन्स जितने टाइम में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आज अगर मैं एक पासपोर्ट या OCI कार्ड या वीसा के लिए अप्लाई करता हूँ, अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जब मिलेगा उस डेट को हम अपॉइंटमेंट साइकिल बोलते हैं 4 वीक्स, विच मीन्स आपको फर्स्ट पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलता है 4 वीक्स के बाद। तो वो कम होगा क्योंकि ज़्यादा काउंटर होगा और काउंटर में VFS स्टाफ बैठेगा, और उस वजह से आई थिंक काफ़ी जो अपॉइंटमेंट साइकिल लंबी चल रहा है पासपोर्ट PCC और OCI और अदर सर्विसेज का, वो बहुत कम हो जाएगा। एंड वी विल सी की और किस किस तरह इस सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक साल पहले जिस एफिशिएंसी के साथ कौंसलर सर्विसेज यहाँ पे होता था, उस स्पीड, उस रफ्तार, उस एफिशिएंसी वापस लेकर आने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम आप सभी का सहयोग, फीडबैक और ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट वी विल गो बैक टू हैविंग एक्सेलेंट सर्विसेज।

0: which were being provided 1 year before.
1: आइए अब जानते हैं VFS Global की वेबसाइट पर जारी इस नोटिस में आवेदकों के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारी। आपातकालीन काउंसलर सहायता की आवश्यकता वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट देखें। जो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए तैयार हैं, उन्हें मौजूदा पासपोर्ट रिटर्न प्रक्रिया के अनुसार VFS Global द्वारा आवेदकों को वापस किया जाता रहेगा। जो आवेदन वर्तमान में प्रोसेसिंग में है, वे सेवाएं बहाल होने तक पेंडिंग रहेंगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वह संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की अपडेट का इंतजार करें।
2: नोटिस में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में टीमें कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं और निर्देशों के अनुसार आवेदकों को जानकारी और सलाह प्रदान करना जारी रखेंगी। VFS Global इंडिया काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर्स में सेवाएं तब फिर से शुरू होंगी जब उन्हें जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बहाल किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो ताज़ा जानकारी के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विभिन्न काउंसलेट्स जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट्स को नियमित रूप से देखते रहें। सभी आवेदकों के धैर्य, समझ और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है। ये भी कहा गया है कि VFS Global इस अस्थायी अवधि के दौरान जहां तक संभव हो समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे ही अनुमति मिलेगी सेवाएं फिर से शुरू करने की आशा रखता है।
1: इस बीच आवेदकों की सहायता के लिए VFS Global ने अपनी ग्राहक सहायता व्यवस्था यानी कस्टमर सपोर्ट अरेंजमेंट्स को और भी मजबूत किया है। आप कॉल सेंटर नंबर 03995638300 पर ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल इंक्वायरीज info.ind_aus@vfshelpline.com पर भेजी जा सकती हैं।
2: VFS, जिसका पूरा नाम वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज है, एक निजी कंपनी है जो कई सरकारों की ओर से प्रशासनिक सेवाएं संभालती है, जैसे वीजा आवेदन, पासपोर्ट नवीनीकरण, OCI दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय काउंसलर सेवाओं के लिए अक्सर आवेदकों को OCI या पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए VFS Global के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जबकि अंतिम मंजूरी काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया या हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। SBS हिंदी पे ये रिपोर्ट शैना कालरा के सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
3: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी कि ऑस्ट्रेलिया में VFS Global और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी जो काउंसलर पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं वो क्या हैं, और जैसा कि बताया कि कुछ असुविधाएं जो हो रही हैं वो अस्थायी रूप से ही हैं, उसके ऊपर काम चलेगा ही। और आगे बढ़ने से पहले आइए क्यों ना ये गाना सुनते चलें।

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: 4th of July savings are happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Upgrade your kitchen with a modern and sleek GE profile refrigerator featuring hands-free autofill for the perfect pour every time. And make laundry day easier with 2-in-1 washer-dryer combo innovation that completes laundry in about 90 minutes. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th through July 8th, U.S. only, C-store online for details.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। हमारे श्रोता मनन जी ने अपना सही जवाब लिख भेजा है। उस जो मैंने साज की जो धुन की जो झलक सुनवाई थी उसके लिए। और हमारे श्रोता पीयूष जी का भी संदेश मिला है। पीयूष जी, आपका सुझाव और आपकी पसंद का गाना भी नोट कर लिया है। संभव अगर होगा तो आज ही, नहीं तो कल के कार्यक्रम में उसे हम शामिल कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने वो जो झलक सुनवाई थी बताती चलूं, जी हाँ, साज, सारंगी और तबला था। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, SBS पर मैं हूं अनीता बरार। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूं भारत में मशहूर मिश्रा परिवार के 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक संगीत मिश्रा जी के साथ, जो उत्तर भारतीय क्लासिकल संगीत की परंपराओं से गहराई से जुड़े एक जाने माने कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत की पुरानी परंपराओं और तकनीकी में आज के दौर के म्यूजिकल इनोवेशन को मिलाकर सारंगी म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने एक खास पहचान बनाई है। हिंदी फिल्मों और सीरीज जैसे कि हीरा मंडी के गाने, फिल्म छावा का बैकग्राउंड स्कोर, रईस, केदारनाथ और कई एल्बम्स में उनकी बजाई सारंगी सुनाई देती है। सारंगी बजाते समय उंगलियों के पोर या नाखून नहीं, बल्कि नाखूनों के क्यूटिकल्स तारों के किनारों पर दबाव डालते हैं, जिससे स्लाइडिंग माइक्रोटोन बनती है। खासा दर्द होता है बजाने में, शायद इसीलिए कहते हैं कि सारंगी बजाना बहुत मुश्किल होता है। बस यही

0: सवाल संगीत जी से पूछा तो वो कहते हैं,
1: सारंगी इसलिए भी लोगों ने उसको एक ऐसे मुश्किल बोला कि सारंगी में ज्यादातर संगत हुई है, ज्यादातर संगत बजाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओल्ड समय में देखिए, जो संगतकार होते थे उनको वैल्यू कम दिया जाता था, मेन आर्टिस्ट थोड़ा पेमेंट में भी, मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ, पेमेंट में भी 50% में भी 60% में भी ज्यादा लेते थे और एक छोटा अमाउंट संगतकार को देते थे। तो संगत करने वालों को काम तो उतना ही है जितना कोई गायक गा रहा है, हम साथ में सेम टू सेम बजा रहे हैं, मुश्किल काम है वो जी। लेकिन पेमेंट कम मिलता तो इसलिए भी एक लोगों ने बना दिया बहुत मुश्किल है
2: जी। सारंगी संगत पहले संगत का वादा तो चाहे वो स्टेज के बिल्कुल पीछे बैठे होते थे, लेकिन जब गायक गाते गाते रुकता तो सारंगी सुरों को पकड़ के उसको अजस्त, तो गायकी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण और उभर के आता है,
1: क्योंकि ना सारंगी ही गायन के साथ ही संगत के लिए बना, तो उसमें पूरी गायकी ही बसती है।
2: तो जब आप किसी के साथ संगत कर रहे हैं तो गायक के शब्दों को भी ध्यान में रखना होता होगा आपको?
1: नहीं, गायक के शब्दों को नहीं, गायक के शब्द के पीछे स्वर क्या लग रहे हैं, वो स्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई तो शब्द यूज कर रहा है ऑडियंस के लिए, बट उस हर शब्द के पीछे में एक स्वर होता है ना, हम उस स्वर को फॉलो करते हैं, बट वो इतना क्विक होता है कि गायक गा रहा है और विद इन अ सेकंड के अंदर वो सेम चीज बजता चलता, साथ साथ बजता रहता है
2: जी। एक लंबे समय तक सारंगी बड़े दर्द भरे सुरों के लिए जानी जाती थी
1: जी।
2: आपने रेडियो खोला, सारंगी की आवाज सुनाई थी तो लगता है कि कहीं कुछ हो चुका है, वो शोक धुन के साथ में जुड़ गई थी। लेकिन अब सारंगी उससे बाहर निकल आई है, तो ये ट्रांजिशन आप कैसे बताएंगे?
1: देखिए, सारंगी को ना बहुत, सारंगी और सारंगी प्लेयर को बहुत दबाया गया पहले, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखिए, सारंगी या तो कोठा, बॉलीवुड की वजह से कोठे का सीन है तो सारंगी दिखा दिया
2: जी,
1: और कोई बड़ा कोई गुजर गया तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पे सारंगी बजा दिया, वो भी विदाउट रिदम। तो दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, सारंगी मतलब बस दुखी ही है। पर ऐसा नहीं, सारंगी का पुराना नाम सौरंगी है, उसमें 100 डिफरेंट इमोशंस निकलते हैं। तो आप जब राजस्थान देखते हैं, पंजाब देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो हैप्पी, मतलब जो खुशी वाले गाने हैं उसमें भी सारंगी बज रहा है। राजस्थान में डांसिंग, जो डांस वाले कालबेलिया और ये सब डांसेस होते हैं, घूमर है, उसमें आप देखेंगे कि सारंगी बज रहा है
2: जी। बिल्कुल, आपने 100 रंगों वाली बात की है, बिल्कुल अनोखा साज है,
1: अलग अलग इमोशंस बेसिकली उसमें से
2: बिल्कुल अनोखा है। और शायद इसलिए भी बहुत मुश्किल काम होता होगा उन 100 जो रंग है उनको कहीं पर बांध लेना, उनके मूड को समझ पाना। आप तो 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक हैं।
1: मैंने सारंगी शुरू किया 7 से 9, 8-9 साल की एज में सारंगी पकड़ी, छोटी सारंगी थी मेरी। लेकिन उसके पहले गाना सीखता था, मेरे ग्रैंडफादर थे वो, बच्चों को, सारे नेबर्स के बच्चों, मतलब 20-25 बच्चे जो भी जमा हो जाए सबको बैठा के सिखाते।
2: आपका तो नाम में ही संगीत था, तो अगर संगीत नहीं होता तो क्या होता?
1: कि मेरे बड़े भैया संदीप हो गए थे, मम्मी और पिताजी का नाम का कॉम्बिनेशन, पापा का नाम संतोष था और पिता मम्मी का नाम गीता, तो उन्होंने सोचा संगीता रखेंगे, लड़की चाहिए, पर मैं तो लड़का हो गया तो उन्होंने ए हटा दिया, लास्ट से संगीत हो गया।
2: तो संगीत हो गया और संगीत अपने आप आपके साथ में जुड़ ही गया और आप संगीत को आगे लेकर बढ़ ही गए हैं। तो किसका आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव आप कहना चाहेंगे कि पड़ा होगा?
1: देखिए, सारंगी बहुत सारे, मतलब मैं तो बहुत बाद में, मेरे दो जनरेशन पहले हमारे ग्रैंड फादर जो हुए, फिर पंडित नारायण दास मिश्रा जी, मतलब मेरे ग्रैंड फादर पंडित गोपाल जी मिश्रा जी ग्रैंड फादर, और फिर पंडित राम नारायण जी थे, सुल्तान खान साहब थे, उस्ताद सुल्तान खान साहब, इन सारे लोगों ने, वो जो एक समय था आज से 30-40 ईयर बैक, उन्होंने तभी से सोलो चालू कर दिया। मतलब संगत तो करते ही थे लेकिन उन्होंने सोलो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने लगे, तो उससे क्या हो गया कि फिर लोगों में थोड़ा सा सोलो सुनने की आदत, पहले आप देखिए पहले के महफिल जो होते थे शास्त्रीय संगीत की महफिल, भारत में भी सारंगी सोलो बहुत कम होता था
2: जी।
1: लेकिन ये लोग, बड़े बुजुर्ग गुरुओं ने ये इसको आगे बढ़ाया, अब उसका फायदा हमको मिल रहा है। अभी आप सिर्फ सोचिए कि जो संगत करते थे सिर्फ पहले के समय में
2: जी,
1: गाने के साथ, गाना सुनने के बाद जब ऑडियंस घर जाती तो क्या बोलते थे, खान साहब ने या पंडित जी ने क्या

0: आया। कितने लोगों का ध्यान जाता है कि तबला वादक बहुत अच्छा था या सारंगी वाला क्या बजा के गया? बहुत कम। बहुत समझदार होगा कोई तो सोचेगा कि आया अच्छा किया वो उसने भी। लेकिन जब आप सारंगी सोलो बजा के उठते हैं तो आपको ही याद करते लोग, अरे वाह सारंगी पे क्या धुन बजाई। तो सोलो होने से एक पहचान मिलता है।
1: आपके ऊपर आपके गुरु की कौन सी परंपरा या तकनीक का प्रभाव है?
0: मेरा जो घराना है, जैसे लोगों को पता होगा कि संगीत के घराने होते हैं, तो मेरा घराना बनारस है। तो मेरे गुरुजी या फिर बोले बनारस घराना का एक स्पेशल ये है कि वहाँ सिर्फ ख्याल गायकी नहीं थी, ठुमरी दादरा ख्याल और इन सब का मिश्रण ध्रुपद धमार, ये हमारे स्वतंत्र वादन में आता है। जब मैं सोलो करता हूँ ये सारी चीजें उसमें आती है, गायकी और तंत्रकारी और ध्रुपद और ठुमरी, ये सारी चीजों का मिश्रण जो है वो बनारस घराना है।
1: और कभी कुछ ऐसा क्षण आया जो आपके लिए एक याददाश्त पल बन गया?
0: मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज, मतलब मेरे पिताजी मेरे गुरुजी थे
1: जी,
0: एक ही चीज बोला कि कभी कभी क्या होता था कि हम अब एज अ फ्रीलांसर बहुत मुश्किल भी कभी कभी आता है, कभी कभी ऐसे समय भी होते हैं कि कुछ काम नहीं होता है, पर तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज बोला कि बेटा अगर काम नहीं है ना तो भी बैठ के रियाज करते रहो, क्योंकि जितना तुम कर्म करते रहोगे ना ये ऊपर कोई भी जो भी जिसको लोग मानते हैं वो सब देख रहा है, तो वो आपको आज नहीं कल ऐसा देगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गया। तो फिर वो जब रियाज करना शुरू किया तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता कि मेरा मुझे बहुत सारे काम और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, जैसे रिसेंटली मैं अभी सऊदी अरब में गया तो मुझे 35 इंटरनेशनल म्यूजिशियन के साथ काम करने का मौका मिला और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चांस। फिर मुझे संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला, युवा पुरस्कार। तो मतलब विश्वास के ऊपर है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें और गुरु भक्ति।
1: और अभी जो मॉडर्न म्यूजिक है, अभी कुछ समय पहले रॉक म्यूजिक में भी सारंगी सुनाई दी हमें, तो सारंगी का भविष्य आपको क्या दिखता है और युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
0: मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए अलग अलग जोन, अलग अलग जोन जोनर में जाके, क्योंकि अगर लोगों को हम सुनाएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। आज भारत में ही बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोग आज मैं बजाने, तो सितार बहुत अच्छा बजाया आपने, उनको पता ही नहीं सारंगी क्या है।
1: हाँ।
0: अरे वाह वायलिन बड़ा अच्छा लगा आपका, नहीं पता, क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं है, भारतीय वाद्यों को देखा नहीं है।
1: तो उसका भविष्य कैसा दिखता है आपको?
0: भविष्य अच्छा है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम लोग सारे लोग जो भी सारंगी वादक, क्योंकि सारंगी वादक बहुत लिमिटेड है, सारंगी के लिए काफी खुल गया है, मतलब वो गजल के साथ भी बजा सकता है, वो फ्यूजन के साथ भी बजाता है, वो जैज के साथ भी सोलो भी बजाता है, तबला सोलो के साथ संगत कर सकते हैं, कथक के साथ करते हैं। अभी मैंने भरतनाट्यम के साथ किया जो दक्षिण भारतीय डांस शैली है, जहाँ पे सारंगी तो कभी बजाई नहीं। तो धीरे धीरे रास्ते तो खुल रहे हैं ना
1: जी।
0: बट हमारा काम क्या है, हमको जितना ज्यादा से ज्यादा सारंगी को लोगों के निगाह में, लोगों के दृष्टि में आएगा तो उसका फायदा मिलेगा और भविष्य अच्छा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए चलते चलते क्या सलाह देंगे?
0: जिनको प्रोफेशन में आना है मैं बोलूंगा कि रियाज आपको अपने और अपने सास को समय देना पड़ेगा अलग से, और गुरु का बात फॉलो करिए। अगर आपको राज करना है अपने फील्ड में तो रियाज करें।
1: जी रियाज करें, राज करें और वही सारंगी का भविष्य बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी दूंगी और आपने समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपका।
0: धन्यवाद आपको।

नरेंद्र जी, आपका संदेश भी मिला है। श्रोताओं, आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम यानी शनिवार के कार्यक्रम में। आप सभी को अनीता बरारकर नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी फीफा वर्ल्ड कप दे सारे मैच बिल्कुल मुफ्त देख सकते हो SBS टीवी चैनल्स जा फिर अपने फोन या इंटरनेट राही SBS ऑन डिमांड उत्ते। एक होर चीज बिल्कुल मुफ्त दित्ती जा रही है SBS पंजाबी वालों, ते ओ ने जी करण औजला दे ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट दियां टिकटां। असी एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जी, जिदे अंदर तुसी दसना है कि तुसी करण औजला दे वड्डे फैन क्यों हो। इहदे विच तुसी कोई किस्सा दस सकते हो, कोई कहानी सुना सकते हो, कोई वीडियो बना के भेज सकते हो, फोटोआं भेज सकते हो, तुहाडे कोल कोई खास पोस्टर हुण करण औजला दे या जो भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि तुहाडा करण औजला दे प्रति जो प्यार है उहनूं खासम खास बनांदी है। इह सारियां चीज़ां भेजो जी SBS दे SBS पंजाबी दे ईमेल ID punjabi.program@sbs.com.au उत्ते। ते जिहड़ी एंट्री सब तो ज़्यादा दिलचस्प होएगी उन्हों मिलेगा करण औजला दे मेलबर्न अते सिडनी दा जिहड़ा कॉन्सर्ट है उन्हां दियां मुफ्त टिकटां। जे तुसी भी जितना चाहते हो फ्री टिकटां, कुछ नहीं करना, बस ईमेल उत्ते लिख के भेजना या फोटोआं वीडियो जिहड़े मर्जी मीडियम राही अपना प्यार जिहड़ा है वह जाहिर करना है जी, ते दसना कि तुसी करण औजला दे फैन क्यों हो। ईमेल ID फिर तो नोट कर लो, punjabi.program@sbs.com.au punjabi.program@sbs.com.au ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਈ।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best.

जी हाँ दोस्तों, जो तुहानू भी यह गाना पसंद आया या सुनना चाहते हो अपनी मनपसंद का गाना, तो वो सिफारिश तुसी कर सकते हो जी। एस एम एस करके दसना कि गाना सुनना चाहते हो। एस एम एस करने लिए नंबर है 0439799767, 439-799-767। पर एस पी एस पंजाबी एक कॉन्सर्ट भी दियाँ, फ्री टिकटा भी दे रही है। करण औजला का जोड़ा ऑस्ट्रेलिया होने वाले कॉन्सर्ट है, मेलबर्न तो सिडनी दोनों कॉन्सर्ट्स के लिए फ्री टिकटा दे रहा है एस पी एस पंजाबी। तो सानू ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं जी कई लोगों दी एंट्रियां। एक पूरे के पूरे परिवार ने अपनी वीडियो बना के भेजी है, तो क्या है कि करण औजला का जोड़ा गाने ने उन्हों की लाइफ लाइन बन गए ने। एक बड़ी प्यारी जी वीडियो है, जो तुम भी जितना चाहते हो जी कॉन्टेस्ट दी फ्री टिकटा, तो वीडियो फोटो लेख जो मर्जी जिदा तुम दसना आवे उदा दसो कि तुसी करण औजला दे फैन क्यों हो, ते जिहड़ी सब तो इंट्रस्टिंग एंट्रीज होणगीआं उन्हां एंट्रीज नूं दित्ते जाणगीआं फ्री टिकटां। ते भेजणी कित्थे है जी? भेजना है जी ईमेल करके पंजाबी punjabi.program punjabi.program@sbs.com.au ते अपनी एंट्रियां भेजो, ते जितो जी करण औजला दे कॉन्सर्ट दीआं फ्री